0: अच्छा बाबा बुलाती हूँ, काम तो मत खाओ। गोपी, ओ गोपी,
1: क्या है?
0: घर चलो, भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
1: तुम बीच में मत बोलो, मेरी इंसलेट हुई है, इंसलेट अपमान।

चल रे अमीरन, चल रे फकीरे, चल रे अमीरन, टक चल रे फकीरे, जीबी चक धीरे धीरे, बीड़ी बीड़ी बीड़ी बीड़ी बीड़ी बीड़ी बीड़ी बीड़ी रुक मेरे, ओ बंदरिया, ओ बंदरिया, अपने बंदर से

में रही जाए। हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय तेरा यूं नजर चुरा के जाना, हाय हाय यूं शुरू हुआ है ये फसाना, हाय हाय।

हाथ न मलिए जनाब, होंठ न चबाइए, बेकदर हो प्यार क्या है तुम न समझ पाए। हाय हाय हाय, यूं शुरू

लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच। हार्ट मेरा तुम हो, हार्ट मेरा तुम हो, स्वीट हार्ट मेरा तुम हो, ये मैं हूँ तुम्हारे दम से। You tell me something and I tell you something, खफा न रहो जी हमसे। दिल को लगाया ये तुम्ही ने सिखाया, I thank you very very much, very very much, very very much, much much much, सच सच सच, oh dear सच सच, I love you very much।

लोग है दोनों खिल के, काहे को है बनी तू आजा मेरी हनी, लुटा तू चमन दिल के। गली उल्फत की ये गुल उल्फत का, आई थैंक यू वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच, वेरी वेरी मच मच मच। सच सच सच ओ डियर सच सच, आई लव यू वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच।

0: Let the people talking. Let the people talking. हम rock rock rocking. न मान किसी का कहना. यू भी अकेली एंड आई भी अकेला. तू साथ हमारे रहना. पीछे पीछे आना. रुक मत जाना. आई वॉन्ट यू वेरी वेरी मच वेरी वेरी मच वेरी वेरी मच मच मच. सच सच सच ओ डियर सच सच. आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी मच. सच सच सच ओ डियर सच सच. आई लव यू वेरी मच वेरी मच वेरी.
1: ओ डियर डियर आई लव यू. I love you very much, very, very, very, much, much, much. Oh dear, oh dear, oh don't fear, come here, oh dear.

0: दर्शन भिक्षा दे दो मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आगे दो
1: मनोहर मोहन के धर हरिओ।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाबा
0: सुनो तो
1: ना,
0: सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराई
1: जरा आप मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Thank you.

0: सुन अरे सुन अरे सुन सुन सुन सुन सुन हर दिल को चाहत का रुझान दिए जा, लेता जा दुआएं आराम दिए जा, हर दिल को चाहत का रुझान दिए जा, लेता जा दुआएं आराम दिए जा।
1: पटाख तुम पटाख तुम पटाख तुम पटाख।

खुद को अपना गम है, यही क्या गम है, जब तक तेरे दम में दम है, जूं जूं के यूं ही जिए जा। ए, वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के खाते। वो दिल है जो सबके दुखों को बांटे, हंस के सुनता जाए गमों के खाते। सारे टूटे दिल अपना के घूम घूम के यूं ही जिए जा। आंखों के आंखों पर उठाव दिए जा, दिल को खिंचाए आराम दिए जा। हर दिल को

0: सावित्री जी, आपके पति देव तो जरूर आए होंगे, उनसे मिलाएंगी नहीं?
1: आइए। ये क्या करती है, क्या मैं गा नहीं सकता?
2: सुनिए, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर।
3: इनका परिचय तो सबके सामने हो चुका है, मेरा नाम सागर है और मैं इनका पति हूँ।
0: मैं इनका भक्त हूँ, इनके संगीत का।
3: ये मेरी छोटी बहन प्रेमा है।
2: नमस्ते।
3: मेरा छोटा भाई
1: किशन रघुवीर सिंह। और आपका नाम?
0: वैसे लोग मुझे मनोहर गाइड भी कहते हैं, चैंपियन भी बुलाते हैं, और कुछ के लिए मैं अंडे वाला हूँ।
3: अंडे वाला? अंडे वाला क्यों?
0: बात यह सागर साहब कि बचपन से मुझे उस मुर्गी की तलाश है जो मेरे लिए सोने के अंडे दे। मुर्गी तो नहीं मिली, हाँ अंडे वाले का खिताब जरूर मिल गया।
2: आप लोग बातें कीजिए, मैं जरूर चंपा से मिलकर आती हूँ।
3: आप बैठिए ना।
0: माफ कीजिए, मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका।
3: हाँ सर, आप होते तो शादी का मजा ही और होता।
0: ये बात है, तो एक काम कीजिए साहब, एक शादी और कर लीजिए। आप कुछ खा नहीं रहे?
3: अजी साहब बहुत खाया, और ये फ्रूट क्रीम खासकर बहुत बढ़िया।
0: एक और खाइए।
3: अजी नहीं साहब।
0: अरे खाइए साहब, हमारे हाथों से खा के देखिए, मजा ही कुछ और होगा। एक मुझे दे दो, सागर को बहुत अच्छी लगी है।

0: क्या कर रहे हो?
1: सर, प्रोफेसर साहब की भविष्यवाणी सच नहीं तो सभी तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूं। ये फ्रूट क्रीम का कप और बस काम खत्म। पार्टी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ,

मैं तेरा ये शहर ना तो यहाँ अमृत मिले पीने को ना जहर।

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा, क्यों हो नजर का कच्चा।

Hi, handsome. यहाँ बैठ सकती हूँ? माफ कीजिएगा,

0: खेल रहे हो?
1: शादी नहीं की, प्यार भी नहीं?
0: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

बचा मुझे सनम, हंसो नहीं जो मैं कहूँ सच है तेरी कसम। अरे क्या जाने तू नहीं पहचाने तू मुझे गम कितने हैं। हाँ मैंने कुछ खोया

हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार धरें।

0: काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो

ताली ताके धुमी ताके ताली ताके जमी ताके जाला आंगो ताके धुकी ताके ताके के ने ताके नाके ताके झुमी ताके नाके नाके झुमी ताके नाके नाके झुमी ताके नाके नाके झम तारी ता झग तारी ता झने झने कोको तारी ता को तारी के ने ताली झम तारी ता झग तारी ता झने झने कोको तारी ता को तारी के ने झम तारी झग तारी ताके नाके ताके ता झंड ता झुमी ता झंड ता झम तारी झग तारी झने झने कोको ता झंड ता झुमी ता झंड ता ताको दंग दंग दंग दंग करे दंग दंग दंग ताको दंग दंग दंग पाका नारंगी की पाका पाका चूता रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

चौदहवीं रात का चांद कुछ थकी थकी सी आधी अधूरी सांसें, कुछ रास्तों के बेनाम से मोड़, एक शाम की फूली हुई सुर्ख व सुनहरी शफक, ये सब उस शायर का सरमाया है जो बूंद बूंद पिघलती रात अपनी ओक में भरता रहता है। कुछ सुनहरी सी चांद की बूंदें, कुछ सब्ज रात के पत्ते जो हथेलियों में पड़ते हैं और सूख जाते हैं। एड़ियों पे उचक उचक के शायर चांद को छूने की कोशिश कर रहा था कि रात बुझ गई, वक्त खत्म हो गया, और वो जो शायर था ना,

0: कांगड़ुओं शुरू हो जाओ और सुर लगाओ। अरे गधो सुर में रेको, सुर में भटको मत भटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए,
1: लोगे तुम बलाए।
0: अरे नालायको हम नहीं तुम,
1: अरे नालायको हम नहीं तुम।
0: तुम लेके बलाए फिर देंगे,
2: फिर देंगे।
0: अरे देंगे दुआए,
1: देंगे दुआए।
0: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी। क्या